नमस्कार प्रणाम पहलाग शिवसौली श्रोताओं आप सुनना छन आकाशवाणी एडलेट 103.1 FM भारतीय प्रसारण का क्षेत्र भाषा कार्यक्रम मा उत्तराखंडी कार्यक्रम ये कार्यक्रम ते आप ऑनलाइन भी सुन सकदन www.5bbi.com.au पर मेरी यानी विनोद बिस्की दगड़ी ये

0: दगड़ियों, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैंने आपने बताई था कि आज मेरी दगड़ी विशेष मेहमान छन सुशीला रावत जी। सुशीला रावत जी जो एक अभिनेत्री भी रहन, एक थिएटर कलाकार भी रहन और आज एक सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशिका भी छन। तो उनको स्वागत करनु छो मैं हमारा कार्यक्रम में। सुशीला रावत जी सादर प्रणाम, स्वागत छ आपको हमारा ये आकाशवाणी स्टूडियो एडिलेड में।
1: नमस्कार विनोद जी, मैं सुशीला रावत आपको और आकाशवाणी का आपक सभी श्रोताओं को दिल से धन्यवाद कर दूं जो आपन मिता बातचीत करने को सौभाग्य दिया है।

0: तो सुशीला जी, मैं और मेरा श्रोता आपसे जानना चाहला कि आपकी शिक्षा दीक्षा कह हुए और आप ये जो अभिनय का क्षेत्र मंच वो कने पहुंचन।
1: जब मेरू जो है तो सिर्फ हायर सेकेंडरी पास है, देखो बाद में बीए दिल्ली यूनिवर्सिटी, एमए समाज शास्त्र, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ भी किया। अभिनय को शौक तो बचपन में टीन से आई, पर ब्याह के बाद मिटा अभिनय करने का एक मौका मिली। स्वर्गीय श्री राजेंद्र धसवाना और कन्हैयालाल ढंडियाल जी द्वारा लिखित नाटक कंस अनुक्रम से मेरी शुरुआत हुई। नाटक निर्देशन करूं छा मित्रानंद कुकरेती जी। वही मेरे सौभाग्य है कि महान हस्तियों तगड़ में काम करी। मेरे जो पहलू काम छे वो लोग बहुत पसंद करी, वंत बहुत मुश्किल थे वे जमन मान लड़कियों बहरा रूबी ब्याह बाद बार बन जाना तो यह जिम्मेदारी और भी बढ़ जाते और कोई मतलब आज्ञा नहीं ध्यान पर एक नाटक करने का आज्ञा तो मिल गई छे। वे बाद सोची छे कि शायद निकल लू, पर जमीन नाटक आरी मेरी एक्टिंग यार घर वाल तभी बहुत पसंद आई। तो यून हुआ ली मेरे पति स्वर्गीय श्री धीरज सिंह रावत जी ने कि भाई मैं तो तय कभी नहीं रुक लू, आप नाटक कर अच्छी विद्यार्थी और सबसे बड़ी बात तुम्हारा टैलेंट खत्म नहीं होना जान। तो एक बात तब विनोद जी मैंने पिछना मुड़ी नहीं दिया कि आज 40 साल हो गई, 40 क्या 45 समय

0: सुशीला जी, मैं आपका जो सम्मान जो आपते मिलियनों की लिस्ट जो देखनू वेमा कई एना अवार्ड छन की जो आप ही हमते बता सकदन की आपते क्या विशिष्ट कार्य ते मिलियन, किले की आपकी जो प्रतिभा रहे वेमा आप चाहे वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को अवार्ड छ या फिर बेस्ट डायरेक्टर को, ये का बीच में देखिन कई संस्थान आपते अवार्ड दिनेन, जैमा उत्तराखंड फिल्म संस्थान दिल्ली छ, उत्तराखंड फिल्म एसोसिएशन देहरादून, यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड का भी, और यूं सम्मान से सम्मानित होने का बाद आपकी कार्यशैली पर क्या प्रभाव पड़ी?
1: विनोद जी, आप जितका भी अवार्ड बताना चाहते हैं मेरे क्रामक प्रति मिलिन, यूं अवार्ड से सिर्फ एक प्रेरणा मिल, अरे अवार्ड हमको प्रेरणा स्रोत ही छन हम अपनी यात्रा था अगले बढ़ाने का, जब क्या का मेरा काम पहचान मिल रही तो दुगना जोश से अपनी मंजिल की ओर पहुंचो, क्या वो बेस्ट एक्टर हुआ, बेस्ट राइटर, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड हुआ, ये संपूर्ण उत्तराखंड है। आज मैं आपके दगर एक बात और साझा करना चाहूँ, यह संपूर्ण उत्तराखंड को एक गर्व एक बात थी कि दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिता मेरी फिल्म गहुतोल को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिल।

0: सुशीला रावत जी, मैं देखन छोड़ लगी हूँ कि आप ऑस्ट्रेलिया में भी छन और भारत में भी आप हमारा उत्तराखंड से बहुत अच्छा ढंग से जुड़े छन, तो आपका अनुभव सी ये न क्या चीज हुई चाहिए कि जैसे कि हम अपना पहाड़ ते देश विदेश से भी जोड़ो और हमारी आने वाली पीढ़ी उत्तराखंड से जुड़ी रहन।
1: विनोद जी अपन ठीक ही सुन, हम लोग पिछले 45 साल से दिल्ली जन महानगर में गोराली नाटक करना था, अपनी बोली अपनी भाषा अपनी संस्कृति तय अगर बनाना था। दिल्ली में वे जमन में जाकर संरक्षण कर और हम ये काम में सफल भी हुआ। ये को सबसे बड़ो उदाहरण में अब तक समझो, जब मैं थिएटर ज्वाइन कर जाए तो मैं गढ़वाली के नाम पर मिटाए कुछ नहीं आन जाए। हाँ समझे छे जाए, जब थिएटर कारी तब एक पर नाम आज एक सफल लेखक निर्देशक एक्टर छो जो अपनी बोली भाषा और संस्कृति को समर्पित छो और आज आप एक समय अपनी बोली माँ आप पर इंटरव्यू दियानो छो, ये से बड़ो एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकूत। बहुत फिल्म कायमकारी, बहुत फिल्म निर्देशनकारी और बहुत स्क्रिप्ट लेकिन अगर मैं आप बतानी चाहूँ तो एक लंबी लिस्ट हो जाए, भारत का टाइम नहीं। तो ये जो मेरी फिल्म थी घंगतोल या जोधा फिल्म बैनर तले बनी थी, जो बैनर तले मीन एक और काम कर जाए चक्रव्यू फिल्म बैनर तले थे। और ये से पहले देख सकते हो उत्तराखंड दूरदर्शन का जो पहलू सीरियल था भागीरथी प्रयास, वो भी यही बैनर तले थे। तो जब ट्यूनिंग वे जान समर्पण वे जान तो कार्य अभी करना पड़ना रिदन।
0: क्या बात, बहुत सुंदर लगी आपसे मुलाकात में बात करी थे। और आप जब जब ऑस्ट्रेलिया की धरती पर रहो तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आउंदी रहो और हमारा श्रोताओं को कुछ न कुछ अपना अनुभव बताउंदी रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये कार्यक्रम में सम्मिलित होने का वास्ता। पहला प्रणाम।
1: मैं धन्यवाद करना चाहूँ अपर प्रोड्यूसर संजय जोशी और सुधीर धड़ जी जो उत्तराखंडी फिल्म को समर्पित छन और आगे बढ़ाना छन। धन्यवाद, बहुत अच्छी लगी आपसे बातचीत करी की।

श्रोताओं अब समय होनो छ आपसे इजाजत लेने को। मैं आशा करता हूँ यो कार्यक्रम आपने पसंद आयो होलू। यो कार्यक्रम एथर भी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध रहलू www.5bbi.com.au पर। आगे दिया मैं विनोद बिस्ते अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होली। तब तई पहला प्रणाम शिवर सोनी।